अध्यात्म ज्योति 104.8 सिल्वर पैलेस विश्वसनीय सुरक्षित र भर पर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चाँदी का एक्सक्लुसिव गहना लगायत भाडाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चाँदी का सामानहरू को लागि सिल्वर पैलेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामान मा 100% शुद्धता को ग्यारेन्टी दिने एक मात्र सिल्वर पैलेस पसल नंबर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं प्युखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा

0: नमस्कार, स्वागत अनि अभिवादन कार्यक्रम पुष्पाञ्जलीमा। म प्रस्तोता युवेन्द्र। अबको करिब करिब एक घण्टा म यहाँसँग आज मंगलबार गणपति गणाधिपति श्री गणेशजीका भजनका साथसाथै सुमधुर भजन लिएर रहनेछु। कार्यक्रमको प्रारम्भमा यो गणपति वन्दना।
1: वक्रतुण्ड

0: sunduğunca Karikom Puspanjali'ye.
1: आदरणीय श्रोता कार्यक्रम पुष्पांजलि में अहिले यहाँ केही सुमधुर भजन को क्रम में हुनुहुन्छ।

कार्यक्रम भजन दीपांजलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ।

0: गीता ज्ञान,
1: गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलवार बिहान 7 बजे देखि 8 बजे सम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा।

नमस्कार आदरणीय श्रोता, जय श्री फुड्स प्रालीद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सर्वमङ्गलममा म सभ्यता तिवारी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु।

0: गोल्ड प्यालेस, शुक्रपथ न्यू रोड काठमाडौँ, फोन नम्बर 42 43 736।
1: गड़बड़ गड़बड़ पेट गड़बड़, जब पेट गड़बड़ सब तिर हड़बड़।
2: कब्जियत, गैस, अपच, ये समस्या साना जस्ता लाग्छन्, तर दिन भर को जीवन लाई अस्त व्यस्त

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनि सूट
4: वाओ
5: अनि मलाई

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रमहरु प्रायोजन गर्न अथवा यहाँको सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन गर्न चाहनुहुने महानुभावहरुले मोबाइल नम्बर 9841289820 मोबाइल

0: मैं और मेरी तनहा
1: ये प्यास क्यों नहीं बुझती?
2: बता नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा।
3: कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है?
2: थोड़ी सी मेरे लिए भी छोड़ो।

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।

छोटी लड़कों की तरह रास्तों में ठुड्डे मारती चलती है। शादी की उम्र को बस पहुंची कि अब पहुंची, और मंजली बेचारी गूंगी है। गेरूलाल ने अक्सर उसे गुनगुनाते सुना है। बहनें कहती हैं कि वो गीत लिखा करती है।

और इसीलिए दोस्तों मैंने फैसला किया कि फिर कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा, कभी किसी लड़की को अपना दिल नहीं दूंगा।

विचार बुरा करते हाल, पलक फड़के आए के दिल धड़के, उमर की उठान कड़कती कमान, कातिल अदा जालिम हया, मेरे खुदा

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One oh four eight.

0: गोल्ड पैलेस, शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: शूटिंग शटर्स, मलाई ट्रैक शूट चाहिए,
2: वो मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनी सूट,
4: वो
5: अनि मलाई

0: ಸಾವೇರ್ ಚುಚ್ಚೆಪಾಟಿ
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: गोल्ड पैलेस, सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 98 41 28 98 20, मोबाइल नंबर 98 41 28 98 20 में संपर्क करना सकूने।

0: आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। अच्छा दोस्तों, उस साल नंबर 19 पर था गीत उस फिल्म का जो संगीत के लिहाज से मेरे ख्याल में 1977 की बेहतरीन फिल्म थी। हा हा हा हा हा भाई, उसका एक एक गीत ऐसा था जो सीधे दिल में उतरकर हमेशा के लिए वहीं रह जाता था। फिल्म का नाम था किनारा, संगीत आर डी बर्मन का था और गीतकार थे गुलजार, जो किनारा के बेमिसाल डायरेक्टर भी थे।
1: तालियों के शोर में एक गुमसुम खामोशी भी थी, एक ऐसी खामोशी जो घटाओं के बरसने से पहले सुनाई देती है। आरती की छलकी हुई आंखों में वो खामोशी यूं ठहर गई थी जैसे कह रही हो, अब के न सावन बरसे, अब के बरस तो बरसेंगी अखियां, अब के न सावन बरसे।

फिल्म किनारा में जितेंद्र और हेमा मालिनी वगैरह के साथ एक रोल फिल्म और स्टेज की गजब की अदाकारा दीना पाठक ने भी किया था। और अब मैं उस साल की छांव से दीना पाठक पर ही फिल्माया हुआ एक और बड़ा खूबसूरत दिल को छू लेने वाला गीत पेश करना चाहूंगा। ये फिल्म भी गुलजार की थी और एक ऐसी बूढ़ी सी महिला का गीत था ये, जो अपने जीवन की शाम से गुजरती हुई आने वाली रात का इंतजार कर रही है। और एक और अनोखी बात इस गीत की ये थी कि इसे गाया था संगीत के भूले हुए जमाने की सुरीली गायिका राजकुमारी ने।

अच्छा भाई, अब 1977 के सालाना प्रोग्राम की पायदान नंबर 18 पर जो गीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन में सजा फिल्म छैला बाबू का, वो गीत बम्बई के जिस घर में मैं पहले रहा करता था उसकी गली में एक छैला नौजवान रोज आधी रात को मस्त होकर यही गीत जोर जोर से गाकर सबका दिमाग खराब किया करता था। गाना था, यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए, प्यार चाहिए के पैसा चाहिए। शायद वो अपनी बीवी से ज्यादा खुश नहीं था। हाँ?

0: आइए फिर एक बार गीत बाला की छाव में। खैर चलिए आगे बढ़े। सामने है उस साल की पायदान नंबर 17। गीत था फिल्म दिलदार का, जिसकी झलक हम जरूर बजा सकते हैं। सुनिए।
1: अरे तुम उदास क्यों हो गए?
2: गांव में होते हंसते रोते, माँ खुश होती फूल पे

0: और बहनों और भाइयों, अब जरा होशियार, क्योंकि अब गीतमाला की छाव में गूंजने वाली है एक ऐसी सुरीली हसीना की आवाज जो कई बार भारत के बॉलीवुड में आती रही हमारे पड़ोसी मुल्क यानी बांग्लादेश से। जी हाँ, आप तो समझ गए ना, रूना लैला। आहा, क्या नाजो नखरे थे रूना जी के, खासकर जब वो स्टेज पर गाती ना तो वो खुद भी झूमती, उनकी बालियां भी झूमती और साथ ही साथ सारी ऑडियंस भी झूमने लग जाती। तो भाई मुझसे भी रहा न गया, एक बार जब वो बम्बई आई तो घेर लिया मैंने उनको इंटरव्यू के लिए। और सुनिए क्या कहा था रूना लैला ने उस इंटरव्यू में और किस अंदाज से कहा था।
1: आपने शायद कभी देखा हो मेरा प्रोग्राम, तो लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और नाचते हैं, गाने के साथ साथ गाते हैं, तो मैं खुद इन्वॉल्व हो जाती हूँ गाने में। कि मेरा ये जाती ख्याल है, कोई आर्टिस्ट टेलीविजन या स्टेज पे गाए, आप जो गा रहे हैं वो आप खुद महसूस कर रहे हैं, और जो कुछ महसूस कर रहे हैं वो आप उस ऑडियंस को ये समझा सके कि वो क्या फील कर रहा है। और मैं सोचती हूँ कि अगर ऑडियंस ये फील ना करे, म्यूजिक को फील ना कर पाए, तो वो मजा नहीं है, क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते उसमें फिर।
0: और साहब, उस साल की पायदान नंबर 16 पर आपको याद है कैसा प्यारा सा इन्विटेशन दिया

0: आज रात का?
1: भाई अभी तो हमारा प्रोग्राम यही है कि हम गीतमाला की छाव में का ये पूरा सुन के रहेंगे, तो हो जाए उस साल की पायदान नंबर 15 पर एक और झलक फिल्म चित चोर से।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में। दोस्तों, अब सिर्फ दो झलकें और बजेंगी 1977 की संगीत सीढ़ी से। 1977 के बाकी टॉप हिट गीतों की झलकें बजेंगी। चोर, चोर।

बदनाम, जो चोर चोर का शोर मचा कर करे लोग बदनाम। कौन यहाँ पर चोर नहीं है, सबका है यही काम, वो करते हैं अरे चोरी चोरी।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में। तो ये आई झलक उस साल के गीत नंबर 14 की, जिसकी फिल्म थी फकीरा। वो गीत एक वर्जन में महेंद्र कपूर ने गाया था।

0: तो भाई आप भी चलिए और सुनिए कि शबाना आजमी ने एक इंटरव्यू में शशि कपूर के बारे में मुझे कितनी प्यारी सी बात बताई थी शुक्रिया के रूप में।
1: एक दिन बाय चांस शशि जी ने अंकुर देखी, उनको बेहद पसंद आई। उसी दरमियान मिस्टर एन एन सिप्पी, मिस्टर विजय भट्ट, इन लोगों ने भी देखी, उनको भी बहुत अच्छी लगी। तीनों में साथ बातें हुई और वो लोग जो हैं शशि जी के ऑपोजिट कोई नई लड़की को लेना चाहते हैं। तब जाके शशि जी ने अंकुर देखने के बाद कहा कि हाँ, शबाना को चांस मिलना चाहिए, और इन लोगों ने मुझे चांस दिया, जिसकी वजह से मैं इनकी बहुत आभारी हूँ, खासतौर से शशि जी की, क्योंकि उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की कि मुझे काफ़ी फिल्में मिली। लेकिन मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि मुझे ये फिल्में इसलिए मिली कि शशि जी को मेरा काम पसंद आया, उन्होंने मुझे एक एक्ट्रेस के तौर से कबूल किया, इसलिए नहीं कि मैं कैफी आजमी की बेटी थी।
0: उस गजब के इंसान शशि कपूर की दोस्ती और मदद से न जाने कितने लोगों को फायदा पहुंचा होगा, और कितनी खुशी पहुंचाई है उस प्यारे कलाकार ने हम सबको अपने किरदारों से। बहरहाल साहब, अब ये लीजिए, ये आई आज के वॉल्यूम की आखिरी झलक उस गीत की जो उस साल नंबर 13 पर था, फिल्म लैला मजनू, संगीत मदन मोहन, शायरी साहिर लुधियानवी और आवाजें प्लेबैक की दुनिया के राजा रानी रफी और लता की।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिंग
2: चीर परिचित यहाँ श्रेष्ठ टेलरिंग
3: अध्यात्म ज्योति 104.8।

जानिके गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वरदीना मातु पुत्र हित जोता पतीना। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना।

0: रुको नहीं बेटी, नाचो नाचो।
1: नीर भरत जमुना तट पर जब भर भर नीर उठाई गगर, तब डगर चलत मोहे छेड़त लंगर, हट जाओ जी कुंवर फुट जात गगर, मोहे छोड़ छोड़ माधव माधव माधव, मोहे छोड़ छोड़ माधव माधव माधव, मोहे छोड़ छोड़ माधव माधव।

माता अदिति महर्षि के पास जाकर उनके चरणों में बैठ गईं और उस समय तक महर्षि अग्निहोत्र कार्य संपन्न कर चुके थे। यज्ञ का सुगंधित धुआं वातावरण में फैलता हुआ आकाश तक जा पहुंचा था। महर्षि ने माता अदिति को देखा तो स्नेह पूर्वक बोले, प्रियतमे, क्या कामना लेकर आई हो? माता अदिति बोली, स्वामिन, साध्वी नारियों की गति तो पति ही हैं। मैं कुछ प्रार्थना करने के लिए इस समय सेवा में उपस्थित हुई हूँ। महर्षि बोले, कल्याणी, तुम क्या चाहती हो? वह संकोच छोड़कर स्पष्ट कहो। माता अदिति ने कहा, प्राणनाथ, इंद्र आदि प्रतापी देवताओं को तो मैं पुत्र रूप में प्राप्त कर चुकी, किंतु मेरे मन में सच्चिदानंद परात्पर प्रभु को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा हो रही है। जिस प्रकार उन्हें पुत्र रूप में पाकर मैं उनकी सेवा कर सकूं, वह उपाय बताकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। महर्षि कश्यप ने कुछ विचार कर कहा, प्रियतमे, वे पर ब्रह्म प्रभु तो ब्रह्मा आदि देवताओं एवं श्रुतियों के लिए भी अगम्य हैं। वे माया से परे एवं माया का विस्तार करने वाले निर्गुण एवं निराकार परमात्मा बिना कठिन तपस्या के साकार विग्रह रूप में कदापि प्राप्त नहीं हो सकते। महर्षि की बात सुनकर माता अदिति के मन में आशा का संचार हुआ। उन्होंने उल्लास पूर्वक पूछा, नाथ, मुझे वह पवित्रम अनुष्ठान की विधि बताने का निर्देश कीजिए। उसमें किसका ध्यान और कौन से मंत्र का जप करना होगा? पत्नी की अत्यंत जिज्ञासा देखकर महर्षि ने उन्हें भगवान विनायक का ध्यान, मंत्र एवं न्यास सहित पुरुष चरण की पूर्ण विधि का निर्देश दिया और कहा, साध्वी, एकाग्र चित्त से भगवान विनायक की उपासना करने पर तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध हो सकता है। पति का निर्देश सुनकर माता अदिति ने प्रसन्न मन से उनका पूजन किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर कठोर तपस्या करने के लिए एकांत वन प्रदेश में जा पहुंची। वहां एक जलाशय में स्नान करके उन्होंने पवित्र वस्त्र धारण किए तथा शुद्ध सुखद आसन पर बैठकर विधि पूर्वक न्यास आदि के सहित पूजन कर मन और इंद्रियों को वशीभूत कर लिया तथा भगवान विनायक के मंत्र का जप और ध्यान करने लगी। इस प्रकार देव माता अदिति घोर तपस्यारत थीं। उन्होंने आहार त्याग दिया, केवल पानी पर ही निर्भर रहीं। फिर भी पानी का त्याग कर वायु के सहारे ही जीवन धारण किए हुए भगवान विनायक का ध्यान और जप करती रही। इस प्रकार तप करते हुए उन्हें दिव्य 100 वर्ष व्यतीत हो गए। उनके उस घोर तप से उनके पुत्रगण देवता भी भयभीत हो गए। उनकी समझ में ना आता था कि माता अदिति किस कामना से ऐसा भयंकर तप कर रही हैं। माता अदिति को भगवान विनायक के दर्शन। इधर भगवान विनायक माता अदिति की घोर तपस्या देखकर द्रवित हो गए। वे तुरंत ही उनके समक्ष प्रकट हो गए। उस समय उनका अद्भुत रूप था। तेजो राशि ही वपुस्तस्य सूर्य कोटि समप्रभः गजाननो दश भुजः कुंडलाभयाम विराजितः कामाति सुंदर तनुः सिद्धि बुद्धि समायुतः मुक्ता मालाम च परशुम विभ्रदयो मेघ पुष्पजम कांचन कटि सूत्रम च तिलकम मृगनाभिजम उर्गम नाभिदेशे तु दिव्यांबर विराजितम करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान अत्यंत तेजस्वी कामदेव से भी अधिक सुंदर शरीर 10 भुजाओं और कानों में विशिष्ट प्रकार के कुंडलों से सुशोभित अपनी दोनों

दोनों पत्नियों सिद्धि और रिद्धि के सहित कंठ में मोतियों की माला, हाथों में कमल और परशु लिए हुए, कमर में सोने का कटी सूत्र, मस्तक पर कस्तूरी युक्त तिलक और नाभि देश में सर्प धारण किए हुए तथा दिव्यांबर से सुशोभित थे। परंतु भगवान विनायक का परशु युक्त दश भुजी रूप देखकर माता अदिति भयभीत हो गईं, उनके नेत्र बंद हो गए, शरीर कंपायमान हुआ तथा वे मूर्छित होकर गिर गईं। भगवान विनायक देव ने माता अदिति की यह दशा देखी तो मधुर स्वरों में आश्वस्त करने लगे, तपस्विनी मैं वही हूँ जिसका ध्यान तुम दिन रात्रि करती रहती हो, उठो उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर वर देने के लिए आया हूँ। माता अदिति को कुछ सांत्वना मिली तो उनकी मूर्छा दूर हो गई। तभी उनके कानों में यह अमृतवाणी निनादित हुई, उठो देव माता, अपना अभिष्ट वर मांग लो मुझसे, मैं साक्षात रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। देव माता अदिति को वर प्राप्ति वर्णन। माता अदिति तुरंत उठ खड़ी हुई, उन्होंने चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, प्रभु आप जगत के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं, नित्य निरंजन निर्गुण निरंकार ज्योति स्वरूप नाना प्रकार के रूप धारण करने में समर्थ सर्व प्रदाता एवं सर्वेश्वर है। हे देवेश, यदि आप संतुष्ट हैं और मेरी कामना पूर्ण करना चाहते हैं तो मेरे पुत्र रूप में प्रकट होने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, मेरी कामना है कि आप मुझे इस प्रकार कृतार्थ करके दुष्टों का संहार और साधु जनों का परित्राण करें, जिससे सभी जन साधारण को कृत कृत्यता की प्राप्ति हो सके। भगवान विनायक ने माता अदिति को तुरंत ही वर दिया, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी, मैं तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट होकर साधु जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करूंगा, इस प्रकार तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। माता अदिति धन्य हो गई। उनको प्रणाम करते करते भगवान विनायक देव अंतर्ध्यान हो गए। माता अदिति ने भी अपने पति देव की सेवा में उपस्थित हुई। उन्होंने महर्षि के चरणारविंद में प्रणाम करके भगवान विनायक देव के दर्शन और उनसे वर प्राप्ति का वृतांत कहा, जिसे सुनकर महर्षि आनंद विभोर हो गए। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।

तीसरा अध्याय माता पृथ्वी की व्यग्रता एवं देव समूहों द्वारा आदि देव का स्तवन करना। त्रिलोक्य विजय देवांतक नारांतक के शासन काल में प्रजा अत्यंत आतंकित और भयभीत थी। विशेषकर देवगण और ऋषिगण बहुत दुखित हो रहे थे। गृहस्थी विद्वान विप्रगण भी प्रसन्न ही थे। असुरों की स्वच्छंदता और अत्याचारों के सभी शिकार एवं पीड़ित थे। जब संसार में सर्वत्र अत्याचार हो रहे हो, धर्म कर्म नष्ट हो रहा हो, साध्वी नारियों का सत्यत्व लुट रहा हो, अबोध बालकों की हत्या की जा रही हो, निरअपराधों को दंड दिया जा रहा हो, तब धरती माता को भी चैन कैसे मिल सकता है। वह अत्यंत त्रस्त हुई भगवान चतुरानंद के पास पहुंचकर बोली, महामहिमामय कमलासन, आपसे छिपा नहीं है कि संसार में असुरों द्वारा घोर अत्याचार किए जा रहे हैं। सभी देवताओं सहित देवराज इंद्र भी मारे मारे फिर रहे हैं। ऋषि ब्राह्मण और गौ असहनीय यंत्रणा से संतप्त हो रहे हैं। प्रजा वर्ग में घोर भय व्याप्त है और स्त्री और बालक भी उन अत्याचारों के घेरे में घिरकर छटपटा रहे हैं। यह सब मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए आपकी शरण में आई हूँ। अतः शीघ्र ही असुरों को विनष्ट कीजिए, अन्यथा मुझे विवश होकर सभी जीवों सहित रसातल में जाना होगा। भगवान ब्रह्मा जी ने गंभीर वाणी में कहा, धरित्री, मैं भी तो उनके अत्याचारों से अछूता नहीं हूँ, क्योंकि मैं सब लोकपाल देवता एवं ऋषि मुनिगण स्वधा स्वहा से वंचित कर दिए गए हैं, इसलिए स्थान मंत्र और आचार से भी हीन हो रहे हैं। इस विपत्ति से बचने का एक ही उपाय है आदि देव भगवान विनायक को प्रसन्न करना, अतएव उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए। चतुरानन का आदेश होने पर वहां उपस्थित देवता ऋषिगण आदि सब समूह में बैठ गए और उन्होंने पृथ्वी सहित विनायक देव की प्रार्थना आरंभ की। नमो नमस्ते खिल लोकनाथ, नमो नमस्ते खिल लोक धामन, नमो नमस्ते खिल लोक कारिन, नमो नमस्ते खिल लोक हारिन। हे समस्त लोकों के नाथ, आपको नमस्कार है। हे सब लोकों के आश्रय, आपको नमस्कार है। हे समस्त सृष्टि के रचयिता और संहारकर्ता, आपको बारंबार नमस्कार है। हे देवताओं के शत्रुओं का दमन करने वाले एवं भक्तजनों के पाप को दूर करने वाले विनायक देव, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप अपने भक्त द्वारा की गई थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न होकर उनका भरण पोषण करते हैं, आपको नमस्कार है। आप निराकार, परे से भी परे, ब्रह्म रूप, षराक्षर से अतीत, सत्व आदि गुणों से अनुग्रह किया करते हैं, आपको नमस्कार है। आप निरामय, निरंजन, दैत्यों का मर्दन करने वाले, पूर्ण काम, नित्य, सत्य, सदैव परोपकार रत तथा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त रहने वाले हैं, ऐसे आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात उन्होंने लोकव्यापी समस्या से अवगत कराने की चेष्टा की। हे प्रभु, समस्त विश्व अहंकार से व्याप्त है तथा स्वधा स्वहा से वंचित हो रहा है, तथा हम सभी देवगण सुमेरु गिरी कंदराओं में पशुओं के समान रहते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए हे विश्व का भरण पोषण करने वाले प्रभु, आप कृपा करके इन महादैत्यों का संहार कीजिए। देवताओं द्वारा इस प्रकार करुणा प्रार्थना की जाने पर उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, देवगण धैर्य धारण करो। देव विनायक महर्षि कश्यप की पत्नी महाभागा अदिति के गर्भ से प्रकट होकर अद्भुत कर्म करेंगे, उन्हीं से तुम्हारा गया हुआ राज्य मिलेगा, क्योंकि वे साक्षात अवतार लेकर दुष्टों का दमन और साधु जनों का पालन करेंगे।
आकाशवाणी सुनकर आश्वस्त हुए ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, देवी अब तुम धैर्य धारण करो, क्योंकि महाप्रभु विनायक देव अवतार लेकर तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे और उस समय सभी देवता पृथ्वी पर प्रकट होंगे। चतुरानंद से उक्त आश्वासन पाकर माता पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर हुई और सब देवगण एवं मुनिगण भी अपने अपने स्थानों को लौट गए। महोत्कट का प्रकट होना। कुछ कालोपरांत देव माता अदिति गर्भवती हुई और उनका तेज दिनों दिन बढ़ने लगा और नव मास पूर्ण होने पर शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में एक परम तपस्वी तेजस्वी बालक रूप भगवान का प्रकटय हुआ, जिनके 10 भुजाएं, कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और ललाट पर कस्तूरी का तिलक शोभा पा रहा था। वक्षस्थल पर चिंतामणि तथा कंठ में रत्नों की माला पड़ी थी। सिद्धि बुद्धि उनके साथ थी। अधरोष्ट जपा पुष्प के समान अरुण दीप्तमान धवल दांत, अंधकार को नष्ट करने वाली अनुपम देह कांति एवं शरीर पर दिव्य वस्त्र अलंकार धारण किए हुए थे। माता अदिति ने उनका वह अलौकिक रूप देखा तो आनंद विभोर हो उठी। उनके मुख की कोई सीमा नहीं थी। तभी उन्होंने सुना, वह तेजस्वी बालक रूप भगवान कह रहे थे, माता तुम्हारा तप सफल हो गया, उसी के प्रभाव से मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आविर्भूत हुआ हूँ। मैं दुष्ट दैत्यों को मारकर साधु जनों का हित सिद्ध करूँगा, उसी से तुम्हारी भी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बालक विनायक देव के वचन सुनकर माता अदिति ने विनत वाणी से कहा, अवश्य ही आज मेरे पुण्य का उदय हुआ है, जिनके कारण साक्षात भगवान गजानन ने मेरी कोख पवित्र की है। वस्तुतः यह मेरा परम सौभाग्य ही है कि नित्य आनंद स्वरूप निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर ने मेरे पुत्र रूप में अवतार लेकर मुझे धन्य बना दिया। परंतु प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि इदम रूपम परम दिव्यम उपसंहर साम्प्रतम प्राकृतम रूपमास्थाय कीडसव कुहको यथा। अपने इस परम दिव्य रूप को छिपाकर प्राकृत शिशु के समान क्रीड़ा करते हुए मुझे पुत्र सुख से सुखी कीजिए। माता अदिति की प्रार्थना व्यवहारिक थी। भगवान गजानन ने तुरंत ही शिशु रूप धारण कर लिया। अब देव माता के समीप एक अत्यंत तेजस्वी हृष्ट पृष्ट एवं दिव्य सौंदर्य से संपन्न नवजात शिशु जोर जोर से रो रहा था। उनके रोने का शब्द तीनों लोकों और 10 दिशाओं में व्याप्त हो गया, जिसे सुनकर माता धरती कांप उठी, दिशाएं भी थरथराने लगी। बंध्या स्त्रियों का बंध्यात्व दोष मिट गया, किंतु असुर नारियों के गर्भ गिर गए। इससे देवताओं में उल्लास और दैत्यों में शोक छा गया। महोत्कट का जात कर्म संस्कार। महर्षि कश्यप के हर्ष का पारावार ना था। उन्होंने शास्त्र विधि पूर्वक बाल रूप भगवान का जात कर्म संस्कार आदि किए तथा विप्रों द्वारा ऋषि मुनियों को पुष्कल दान दक्षिणाएं दी तथा घर घर में मिष्ठान युक्त बायन प्रेषित किया। बालक का नाम महोत्कट रखा गया। माता अदिति के गर्भ से भगवान विनायक देव को अवतरित होना सुनकर दूर दूर से ऋषि मुनि ब्रह्मचारी एवं साधु तथा भक्तजन आ आकर दर्शन करने लगे। महर्षि कश्यप के आश्रम पर दर्शनाभिलाषियों का तांता लग गया। दर्शनार्थियों में नारद जी, वशिष्ठ जी, वामदेव जी आदि अनेक स्वनाम धन्य महर्षि भी थे। कश्यप जी ने सभी का समुचित रूप से स्वागत सत्कार किया तथा गौ आदि प्रदान करके सबका आभार माना। नारद आदि ने ऋषियों से कहा, महर्षि हम आपके पुत्र के दर्शनार्थ आए हैं, हमें उनके दर्शन कराओ। कश्यप जी का संकेत पाकर माता अदिति
अपने विलक्षण पुत्र को ले आई, जिसे देखते ही उन ऋषियों ने कहा, महर्षि तुम्हारे इस शिशु के शरीर में 32 शुभ गुण दिखाई दे रहे हैं। आपने इसका महत्कट नाम गुणानुसार ही रखा है। विश्व के मंगलार्थ यह अत्यंत भीषण कर्मा होगा। ऋषि श्रेष्ठ, आपके घर में आदि मध्य और अंत से रहित भगवान विनायक देव ने ही अवतार लिया है। यद्यपि बालक के जीवन में अनेक संकट आएंगे, तथापि वे सब स्वतः दूर हो जाएंगे। फिर भी यह जब तक स्वयं सशक्त ना हो जाएं, तब तक आपको सावधानी से इनकी रक्षा करनी चाहिए। तदउपरांत महर्षि वशिष्ठ जी ने उन कश्यप पुत्र भगवान के ध्वज वज्रांकुश चिन्हित चरणारविंदों का भक्ति भाव पूर्वक पूजन करने की प्रार्थना की। उनके साथ प्रार्थयामास सर्वस्त्वम भूभार हरणम कुरु, साधुनाम पालनम देव दुष्ट दानव घातनम। अन्य सभी ऋषियों ने भी निवेदन किया, हे प्रभु धरती का भार हरण कीजिए, साधुओं का पालन और दुष्ट दानवों का विनाश कीजिए। हे नाथ, इस प्रकार प्रार्थना और प्रणाम आदि करके ऋषि गण अपने अपने आश्रमों को चले गए। सभी के चित अत्यंत प्रफुल्लित थे। उन्हें विश्वास था कि यही महत्कट भगवान पृथ्वी को भार मुक्त करेंगे, जिससे साधु जनों की रक्षा होगी तथा दैत्यों के अत्याचारी शासन का अंत हो जाएगा। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।

0: खिलौना नपर्ने जर्मन प्रविधिबाट बनेको उत्कृष्ट उत्पादन ऊर्जा दाल र चामल, ऊर्जा दाल चामल स्वादले खाइन्छ, सधैँ स्वस्थ भइन्छ।
1: FM अध्यात्म ज्योतिका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू प्रायोजन गर्न अथवा यहाँको सेवा वा उत्पादनको विज्ञापन गर्न चाहनुहुने महानुभावहरूले मोबाइल नम्बर 9841289820 मोबाइल नम्बर 9841289820 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
2: चौथा अध्याय भगवान महतकट की बाल लीलाएं। महतकट के जन्म का समाचार सुनकर असुरों में चिंता व्याप्त हो गई। वे जान गए कि यह अदिति पुत्र अवश्य ही हमारे अनिष्ट में तत्पर हो जाएंगे। उन्हें अब यह समझने में देर ना लगी कि अदिति ने इसलिए कठोर तपस्या की थी। शंकित असुर गण भविष्य में उपस्थित होने वाले इस घोर संकट के प्रतिकार का उपाय सोचने लगे। अनेकों प्रमुख असुरों ने एक स्थान पर बैठकर परस्पर परामर्श किया। उस समय स्पष्ट निर्णय लिया गया कि घातक वृक्ष अंकुर से विशाल ना हो सके, इस उद्देश्य से उसे पहले ही नष्ट कर डालना चाहिए। इस निर्णय को कार्यान्वित करने का भार सौंपा गया विरजा नाम की एक अत्यंत कुटीला एवं क्रूर कर्मा राक्षसी पर। राक्षसी विरजा अपने कार्य में तुरंत लग गई। वह बिना कुछ विचार किए हुए अपनी चतुरता के अहंकार में मत हुई कश्यप जी के आश्रम में जा पहुंची। वह बालक को देखने का उपकर्म करती हुई जैसे ही महतकट के पास गई, वैसे ही उन्होंने झपट कर उसे मृत्यु मुख में पहुंचा दिया। इस प्रकार बेचारी विरजा अपनी ही चतुरता पर बलिदान हो गई। असुरों ने सुना कि विरजा मारी गई तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगे कि वह तो बहुत ही चतुर और बलशालिनी थी, एक छोटे से बालक के हाथों कैसे मारी गई। अंत में निश्चय हुआ कि उद्घत और धुंधुर नामक वीरों को वहां भेजा जाए, वे अवश्य ही उस बालक को मारने में सफल रहेंगे। आदेश मिलते ही दोनों असुर वीर चल पड़े। उन्होंने तोते का मनोहर रूप बनाया और कश्यप जी के आश्रम में जा पहुंचे। उस समय माता अदिति महतकट को दुग्धपान करा रही थी। तभी दो तोते सुमधुर वाणी में बोलने लगे। सुंदर तोतों को देखकर महतकट ने दूध पीना छोड़ दिया और माता से बोले, माता उन दोनों तोतों को ला दो। माता ने समझाया, पुत्र पहले दूध पीकर पेट भर लो, तब उन्हें देखना। यह तो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, इन्हें पकड़ना भी कोई सहज कार्य नहीं है। महतकट बोले, अरे इन्हें पकड़ना भी कोई बड़ी बात है, लो देखो मैं पकड़ता हूँ इन्हें। यह कहकर महतकट वेग पूर्वक उछले और बाज के समान झपट्टा मारकर एक एक हाथ में दोनों को पकड़ लाए। पक्षी उनके हाथों में दबाव में फड़फड़ाए और चोंच मार मार कर महतकट को घायल करने लगे। यह देखकर मुनि कुमार ने उन तोतों को तुरंत ही मार डाला। तब उनका छद्म वेश दूर हो गया और उनका राक्षस रूप प्रत्यक्ष हो गया। यह देखकर भयभीत हुई माता ने अपने बालक को उठाकर गोद में ले लिया। महर्षि ने शांति कर्म करके बाधा शांत की और पत्नी से बोले, आज परमात्मा ने ही इसकी रक्षा की है। तुमने यह जानते हुए भी कि यहाँ अनेकों असुर रहते हैं, बालक को अकेले कैसे छोड़ दिया। माता अदिति ने कहा, मैंने अकेला तो नहीं छोड़ा था, वरन बालक ही अपने मायावी रूप पर मोहित होकर उन्हें पकड़ आया। अब और सावधानी रखूंगी। धीरे धीरे 4 वर्ष व्यतीत हो गए। उनकी बाल क्रीड़ाएं माता पिता और वनवासी स्त्री पुरुष बालकों के लिए मनोरंजन और चर्चा का विषय बनी हुई थी। सभी के लिए महोत्कट भगवान प्राणों से भी अधिक प्रिय हो रहे थे। आश्रम के निकट

लाखों के लिए मनोरंजन और चर्चा का विषय बने हुई थी। सभी के लिए महोत्कट भगवान प्राणों से भी अधिक प्रिय हो रहे थे। आश्रम के निकट या पानी भरने में भी भयभीत रहता था। चित्र नामक गंधर्व को अपने स्वरूप की प्राप्ति। एक बार सोमवती अमावस के साथ व्यतिपात योग पड़ा। उस दिन माता अदिति भी स्नान करने के लिए उस सरोवर पर जा पहुंची। उनके साथ महोत्कट भी थे। बालक को तट पर बैठाया और स्वयं स्नान करने के लिए सरोवर में उतर गई। तभी बालक ने भी माता के पास पहुंचने की चेष्टा की, परंतु पास ना पहुंचकर प्रथम सीढ़ी पर ही गिर पड़ा और फिर संभलकर वहीं खेलने लगा। तभी उसे एक मगर ने पकड़ लिया। यह देखकर माता उधर दौड़ती हुई चिल्लाई, अरे कोई इसे बचाओ, हाय मेरे लाल को मगर ने पकड़ लिया है। निकट में ही कुछ मुनि कुमार स्नान कर रहे थे। वे बालक को छुड़ाने के लिए दौड़ पड़े, किंतु वे उसे मगर से ना छुड़ा सके। बालक को पकड़े हुए मगर पानी के भीतर ले जाने के लिए खींच रहा था। उसके साथ माता भी खींचती जा रही थी। उसी समय बालक उछला और उसने मगर से अपने को छुड़ाकर तुरंत ही उस जल में से उठाकर बाहर तट से दूर फेंक दिया। इससे उनका शरीर हटकर चूर चूर हो गया और उनके प्राणों ने शरीर का साथ छोड़ दिया। यह देखकर माता सहित सभी उपस्थित व्यक्तियों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तभी सभी ने देखा कि मगर देह के समीप ही एक सुंदर वस्त्र अलंकार धारी तेजस्वी पुरुष प्रकट होकर महोत्कट की ओर हाथ जोड़कर कह रहा है, प्रभु मेरा नाम चित्र गंधर्व है। मैं सभी गंधर्वों का अधिपति था। मेरे विवाहोत्सव में समस्त गंधर्व और बहुत से ऋषि मुनि भी सम्मिलित हुए थे। मैंने सभी का स्वागत सत्कार किया था, किंतु भ्रमित बुद्धि के कारण महर्षि भृगु का सत्कार करने में भूल हो गई। यह देखकर महर्षि क्रोधित होकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। इसके फल स्वरूप एक सरोवर में जाकर मगर बनेगा। ऋषि का शाप सुनकर मैं थर थर कांपने लगा। फिर मैंने उन महर्षि की बहुत अनुनय विनय की, तो वे कुछ द्रवित होकर बोले, गंधर्वराज, मेरा शाप तो मिथ्या नहीं हो सकता, किंतु जब भगवान गजानन कश्यप पुत्र होंगे, तब उनके स्पर्श से तुम उस योनि से छूटकर निज स्वरूप प्राप्त करोगे। इतना कहकर गंधर्व ने भगवान गजानन की स्तुति आरंभ की। त्वमेव जगताम नाथ कर्ता पापापहारक निर्गुणो निरहंकारः सद सत्कारणं